धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

युद्धाय कृत निश्चय। एतयोः श्लोकस्य तात्पर्यम् अस्ति, हिंदी में बताऊंगी, हे परंतप, हे अर्जुन, तू कायर मत बन, डरपोक की जैसी बातें मत कर, यह तुझे शोभा नहीं देता, तेरा मन बहुत दुर्बल हो गया है, तू क्षुद्र दुबलेपन को छोड़कर उठ खड़ा हो, इस युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, युद्ध में जीतेगा तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिलेगा, युद्ध करने का निश्चय करके तू उठ खड़ा हो, क्षत्रिय धर्म का पालन कर, इस प्रसंग में तेरा यही कर्तव्य है। इतना कहने पर भी अर्जुन का विषाद कम नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जाना कि अर्जुन का रोग बहुत गहरा है, उसके रोग का मूल अज्ञान है, इसलिए अज्ञान का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण जी ने गीतोपदेश किया। तरही किम अभवत्, अर्जुनस्य अज्ञान निवारणार्थम श्री कृष्णः गीतोपदेशं कृतवान्। किम अभवत्, गीतोपदेशं कुत्र कृतवान् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति, कुरुक्षेत्रे समरांगणे महाभारत युद्ध भूमौ श्री कृष्णः अर्जुनम् उपदेशं कृतवान्। किमर्थम् उपदेशं कृतवान्? तर्हि अज्ञान निवारणार्थम्। अस्तु, किञ्चित् गीता विषये ज्ञातवन्तः, इदानीम् एकं प्रश्नं पृच्छामि, अवश्यं उत्तरं प्रेषयन्तु। अर्जुनस्य विषादस्य मूलं किम्, अथवा अर्जुनस्य विषादस्य कारणं किम्? इदानीं गीता श्लोकपठनं, चतुर्थोऽध्यायः, श्लोकसंख्या 1-10। अध्याय 4, श्लोकसंख्या 1-10।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: तेजस्विता का महत्व. आसमां में तपता सूरज कितना प्यारा लगता है. उसकी तेजस्वी किरणें जब धरती को छूती है तो धरनी में मानो प्राण आ जाते हैं. रवि की तेजस्वी रश्मियां जब छोटे छोटे पौधों और पुष्पों पर पड़ती है तो वो कितना खिलखिला उठते हैं. वास्तव में सूरज के तेज में होती है जीवनदायिनी शक्ति. आज संसार की गाड़ी केवल सूर्य देवता के तेजस्विता के बलबूते ही तो चल रही है. तेजस्विता केवल सूर्य को ही नहीं लेकिन बुद्धिवान को संसार में चमका देती है. जैसे सूर्य तेजस्विता के कारण सूर्यमाला का केंद्र बिंदु है, ऐसे ही तेजस्विता के गुण से संपन्न व्यक्ति भी जन समुदाय के आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है. मुखमंडल पर कांति व चमक होना देही की शारीरिक तेजस्विता का नाम है. विलक्षण बौद्धिक क्षमता से उत्तमता के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होना बौद्धिक तेजस्विता है. बोल में सत्यता की शक्ति भर के वाणी प्रभावशाली बनाना और सुनने वालों से वाणी का लोहा मनवा लेना वाणी की तेजस्विता है. परीक्षा में खुद को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किसी भी छात्र को बुद्धि की तेजस्विता की आवश्यकता पड़ती है. बड़े ते बड़ी सभा को केवल तेजस्वी वाणी की जादुई शक्ति से ही प्रभावित कर अपने वश में किया जा सकता है. शरीर चाहे बहुत अधिक सुंदर ना भी हो लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति के चेहरे पर सदा आत्मिक तेज चमकता रहता है. चाहे व्यक्ति के पास रुपए पैसों से पाई चमक धमक ना हो लेकिन चरित्र में नैतिक मूल्य हो तो वह कर्मों से तेजस्वी बन जाता है. ऐसा तेजस्वी ही उज्जवल समाज का निर्माता साबित होता है. सच्ची तेजस्विता कर्मठता में है. जो कर्म देश समाज और परिवार के हित यानी कल्याण के लिए समर्पित होता है वो मानव को जनहित करने वाला सच्चा तपस्वी बना देता है. आसमां में एक सूर्य तपता है और सारी जीव सृष्टि को ऊर्जा मिलती है. ऐसे ही मानवता और लोक कल्याण के कार्य में तपने वाला पुरुष तेजस्वी बन जाता है. जिसके विचार वाणी उज्जवल और कर्मठता भरे हो उसके कर्मों से तेजस्विता की किरणें फूट पड़ती है जो हर मन में उमंग और आत्म जागृति का ज्वार पैदा करती है. अतः तेजस्वी बनिए और अमर कीर्ति पाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की दो दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

0: छह लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
1: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीन फील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
1: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
1: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच आईएमएफ ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, यूपीआई पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। एसआईआर के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, एआई से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट जेई की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास एआई ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसु।
9: केली कैंसर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव।
10: कैंसर कोणत्याही प्रकारचा असो अत्याधुनिक उपचार एकाच छताखाली भेटते।
9: प्रथमच उत्तर कर्नाटकामध्ये बेळगाव येथे तज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टर, अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी सहित सुसज्ज हॉस्पिटल केली कैंसर हॉस्पिटल।
10: केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC पाठीमागे नेहरू नगर बेळगाव येथे।
9: तुमच्या आरोग्यासाठी नवीन आशेचा किरण केली कैंसर हॉस्पिटल।
10: मिळणाऱ्या सुविधा, हायली स्किल्ड डॉक्टर्स टीम, केमोथेरपी, हेमटो ऑन्कोलॉजी, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट,
9: रोबोटिक सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, ऍडव्हान्स रेडिओथेरपी आणि यासोबत सर्व प्रकारच्या कॅन्सर वरती उपचार।
10: आमचा पत्ता केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC पाठीमागे केली कॅन्सर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव येथे।
9: फोन नंबर 08312552500 आणि 2473777।
10: मोबाईल नंबर 6360712326 किंवा टोल फ्री नंबर 1099।
9: आजच भेट द्या केली कॅन्सर हॉस्पिटल बेळगाव येथे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा सुनने जा रहे हैं जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI। AI वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में आज हम सुनेंगे। आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा, चिकित्सा, संचार, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अनेक नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं, लेकिन इसके साथ ही रोजगार, निजता, सुरक्षा और मानवीय क्षमताओं को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आर्यन शेट्टी पॉलिटेक्निक बेगावी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के लास्ट सेमिस्टर के विद्यार्थी अलमेरा नाशीपुड़ी और सुफाना शेख। दोनों विद्यार्थी इस विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेगी और हमें ये समझाने का अवसर देगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में मानवता के लिए वरदान है या इसके कुछ पहलू अभिशाप भी बन सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप ट्यून इन रहना KLE वेणु धोनी 90.4 FM पे।
1: हेलो एंड नमस्कार, माय नेम इज सुफाना शेख एंड आई एम फ्रॉम आर्यन शेट्टी पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिपार्टमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन।
2: हेलो नमस्कार, माय सेल्फ अलमेरा नाशीपुड़ी फ्रॉम आर्यन शेट्टी पॉलिटेक्निक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट।
1: व्हेनेवर अ रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी अराइव्स, अ फर्स्ट इंस्टेंट एज अ सोसाइटी इज फियर। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स अराइव्ड, क्रिटिक्स क्लेम्स मेंटल मैथ वॉज डेड। When Google search launched, skeptics instanted students would stop reading books. Today we hear the same exact things fear about AI. Calculators se math khatam nahi hua, advanced calculus shuru hua hai. AI se dimag ban nahi hota, human visions bade hote hain. Top college ho ya local polytechnics, AI har student ko 24/7 personal expert tutors deta hai. लेवल प्लेइंग फील्ड इसे कहते हैं। इट डजेंट रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, इट एलिमिनेट्स बोरिंग बॉयलर प्लेट्स ग्रट वर्क सो स्टूडेंट्स कैन फोकस ऑन एक्चुअल सिस्टम डिजाइंस एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। टेक्नोलॉजी से डरना ऑप्शन नहीं है, AI को मास्टर करके फ्यूचर रेडी बनाना है, असली स्मार्टनेस है। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज एक्सट्रीम एलिमिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन। ChatGPT कन्वर्ट्स आवर इन टू मिनट्स। ChatGPT घंटों के रिपीटेटिव काम जिससे ड्राफ्टिंग ईमेल, ईमेल फॉर्मेटिंग, डेटा रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिपोर्ट समरी कुछ सेकेंड्स में कर देता है। स्टडीज के मुताबिक नॉलेज वर्कर्स हर दिन 40 से 60 मिनट्स बचाते हैं, यानी हफ्ते में 10 घंटे तक जो हाई लेवल स्ट्रैटेजी काम में लग सकता है।
2: इमेजिन कीजिए एक जवाब जो परफेक्टली लिखा हुआ है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया है और बल्कि झूठ है, वही AI है। मेरे ओपोनेंट सुफाना कहती है कि हम गूगल और कैलकुलेटर्स से डरते हैं और माना हम गलत थे, लेकिन कैलकुलेटर्स हमेशा सही आंसर्स देते हैं और गूगल बताता है कि ये जानकारी कहाँ से आती है। AI इन दोनों में से कोई गारंटी नहीं देता। इट कैन इन्वेंट फैक्ट्स, क्वाइट्स एंड इवन होल स्टडीज एंड साउंड जस्ट एज श्योर व्हेन इट इज रॉन्ग। दिस इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मींस इट मेक्स अप इंफॉर्मेशन दैट साउंड्स बिलीवेबल बट इट इज फॉल्स एंड इट स्टेट इट कॉन्फिडेंटली एज इफ इट वर ट्रू। और जो कुछ सुफाना ने तारीफ की वो एक चीज पर डिपेंड करती है जो सुफाना ने स्किप कर दी। सुफाना कहती है यूजर्स को पहले से स्किल्ड और केयरफुल होना चाहिए। ज्यादातर यूजर्स ऐसे नहीं है। आज हर एक पॉइंट पर जवाब दूंगी और दिखाऊंगी कि AI फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। सो माई काउंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट आज फॉर हर। सुफाना, मैं आपको आपका सोच पूछती हूँ। ऐसे स्टडीज ज्यादातर सेल्फ रिपोर्टेड होती है और छोटे टास्क तक लिमिटेड। सेविंग 40 to 60 मिनट्स अ डे इज अबाउट 3 to 5 hours a week, not 10. And every output has to be checked for errors, which is the time saved. मेरा point है, जो tools कभी confidently गलत होता है और दोनों तरफ से equally polished दिखता है, वो किसी भी इंसान तक तेजी से गलतियां फैला सकता है।
1: Okay, Almera, calculator सिर्फ fixed numbers process करता है। AI human natural languages process करता है। Almera, you don't need to hammer, not for being a screwdriver. AI is a productive force multiplier. Hallucination check करना हमारा काम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि innovation से डरना शुरू कर दे। Smart people use smart tools to move faster और हमें critical thinking, decision making handle करती है। ये सब्सटीट्यूट नहीं अल्टीमेट को पायलट है. सो माई नेक्स्ट पॉइंट टू यू इज डेमोक्राइजेशन ऑफ एलाइट एजुकेशन एंड ट्यूटरिंग. चैट जीपीटी एक्ट्स एज 24/7 पर्सनल एडाप्टिव ट्यूटर. पहले टॉप लेवल पर्सनल ट्यूटरिंग सोशल इकोनॉमिक पोजिशन पर डिपेंड करती थी और अब एक और ट्यूटर की तरह क्वांटम मैकेनिक्स समझ सकता है, कैलकुलस इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकता है, माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर हर स्टूडेंट की स्पीड से एक्सप्लेन कर सकता है.
2: सुफाना, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसके लिए डिवाइस, इंटरनेट और अच्छी इंग्लिश चाहिए. सो इट कैन वाइडन द डिजिटल डिवाइड इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग इट. और जो ट्विटर कभी कभी गलत हो वो खतरनाक है, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो कब गलत है. मेरा पॉइंट, सुफाना, एक असली ट्विटर देखता है कि आप क्या गलत समझ रहे हो और क्या गलत कर रहे हो. AI सिर्फ आंसर्स देता है, जिससे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग के बिना आंसर्स मिलते हैं.
1: ओके, सो अल्मेरा, जब कंपाइलर ने असेंबली लैंग्वेज रिप्लेस की थी तब डेवलपर डंपर नहीं हुए थे. उन्होंने मॉडर्न इंटरनेट बनाया था. जब दुनिया की 92% फॉर्चून 500 कंपनीज AI यूज कर रही है, तो स्टूडेंट्स को AI से दूर रखना बैकवर्ड थिंकिंग नहीं है. एंड माय नेक्स्ट पॉइंट टू यू इज अनप्रेसिडेंटेड सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल एक्सेलरेशन. It drafts boilerplates code, debug complex logics, explain error tracks and translate script across programming languages. Examples C to Verilog or Python in real time, reducing rapid prototyping cycles from day

0: प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में नहीं, प्रॉब्लम हमारे पुराने इवैल्यूएशन सिस्टम्स में है जो रोते मेमोराइजेशंस टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल लॉजिक नहीं। एजुकेशंस को इवॉल्व होना पड़ेगा, टूल्स को बैन करके कुछ नहीं होगा। एंड सो माय नेक्स्ट पॉइंट टू यू इज ग्लोबल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इक्वलाइजर ऑपरेटिंग अक्रॉस ओवर 95 लैंग्वेजेस, नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स टेक्निकल पेपर रिफाइन कर सकते हैं एंड कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेट कर सकते हैं और नेटिव फ्लुएंसी के साथ प्रोफेशनल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लिख सकते हैं।
1: सो सुफाना, दिस इज माई काउंटर टू लैंग्वेज इक्वलाइजर। मेनी लैंग्वेजेस डज नॉट मीन इक्वल क्वालिटी। AI is strongest in English and weaker in smaller and local languages. गलत ट्रांसलेट हुआ तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को असली नुकसान कर सकता है और नेटिव फ्लुएंसी बढ़ा चढ़ाकर किया गया क्लेम है। इट लर्न्स फ्रॉम इंटरनेट डेटा विच इज डोमिनेटेड बाय सर्टन लैंग्वेजेस कल्चर्स एंड व्यू पॉइंट्स सो इट कैन रिप्रोड्यूस स्टीरियोटाइप्स एंड स्क्रूड व्यूज।
0: ओके अलमेरा, वर्ल्ड उनका नहीं है जो इन्फॉर्मेशन रटते हैं, वर्ल्ड उनका है जो AI टूल्स को मास्टर करके कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व करते हैं। एंड ChatGPT ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं करता, ये रूटीन रट्टा और एग्जीक्यूशन का बोझ हटा देता है ताकि इंसान हायर ऑर्डर स्किल्स पर फोकस करे, जैसे प्रॉम्प्ट डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, आउटपुट ऑडिट करना और क्रिटिकल इवोल्यूशन।
1: सो सुफाना, माय काउंटर टू हायर ऑर्डर कॉग्निशन, जो आप समझते ही नहीं उसे ऑडिट नहीं कर सकते। क्रिटिकल इवोल्यूशन फाउंडेशनल नॉलेज पर टिका है जो प्रैक्टिस और थोड़ा रटने से बनता है। बेसिक स्किप करोगे तो हायर लेवल तक पहुंचोगे ही नहीं। माय पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग। व्हेन वी हैंड ओवर द स्ट्रगल ऑफ थिंकिंग, वी लूज द हैबिट ऑफ थिंकिंग। स्किल्स वी डोंट यूज फेड।
0: अलमेरा, आई टोटली लाइक डिसएग्री विद यू एंड माय नेक्स्ट पॉइंट टू यू इज रियल टाइम नॉलेज सिंथेसाइज अक्रॉस डिसिप्लिन्स, अनलाइक ट्रेडिशनल सर्च इंजन दैट रिटर्न्स मिलियंस ऑफ डिस्कनेक्टेड लिंक्स। AI बहुत सारी फील्ड्स की जानकारी को एक ही जवाब में स्ट्रक्चर्ड समरी, कंपैरिजन टेबल्स और एक्शनेबल प्लान्स बनाकर देता है।
1: सो सुफाना, माय काउंटर टू रियल टाइम नॉलेज सिंथेसाइज, अ नीट समरी कैन हाइड मिस्टेक्स। एरर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस गेट ब्लेंडेड इनटू वन स्मूथ कॉन्फिडेंट आंसर एंड यू कांट इवन सी वेयर एवरीथिंग केम फ्रॉम। सर्च सोर्स दिखाता है ताकि आप चेक कर सको समरी बनाने में न्यूसेंसेस और एक्सपर्ट्स के बीच के डिसएग्रीमेंट्स भी गायब हो जाते हैं। माय पॉइंट, कॉपीराइट। दोज समरीज आर बिल्ट फ्रॉम द वर्क ऑफ राइटर्स, रिसर्चर्स एंड आर्टिस्ट हु वर ऑफन नेवर आस्क्ड और पेड।
0: सो अलमेरा, आई टोटली डिसएग्री विद योर पॉइंट, ओके, बट यू शुड नो दिस, ओवर 92% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज यूज ChatGPT इन देयर कोर ऑपरेशंस। कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन करने से लेकर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा एनालाइज करने तक ये एक्सपेरिमेंटल टूल एसेंशियल कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है।
1: सुफाना, मैं आपको आपका 92 वाले फिगर का सोर्स पूछती हूँ, क्योंकि यूज करते हैं का मतलब सिर्फ कुछ एम्प्लॉइज का ट्राई करना हो सकता है, कोर ऑपरेशंस नहीं। कुछ कंपनीज ने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर होने के बाद एम्प्लॉइज को स्ट्रिक्ट कर दिया है AI यूज करने से। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल रिपोर्टेड इन द न्यूज। मेरा पॉइंट ये है, प्राइवेसी। लोग प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, कोड्स और पर्सनल डिटेल्स इसमें पेस्ट कर देते हैं। कन्वर्सेशन स्टोर हो सकती है और यूजर्स को अक्सर पता ही नहीं चलता कि डाटा कहाँ जाता है।
0: ओके, सो अलमेरा, आई एक्चुअली डिसएग्री विद योर पॉइंट, बट माय नेक्स्ट पॉइंट टू यू इज नेचुरल लैंग्वेज एज यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर इंटरफेस। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिंटैक्स या डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेजेस सीखने की मुश्किल AI खत्म कर देती है। सिंपल बोली जाने वाली नेचुरल लैंग्वेजेस में कंप्यूटर से बात करना नॉन टेक्निकल लोगों भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं।
1: So, Sufana, to natural language as a universal interface, simple language work hoti hai. Aur work instructions se galat results aate hain. A system that guesses what you meant can be confidently wrong and a non-technical user can't spot the error. Barriers hatane ke saath wo understanding bhi hat jati hai jisse log output check kar sakte hain. Mera point, log ab medical, legal aur financial sawal सिंपल लैंग्वेज में पूछते हैं। वहाँ एक कॉन्फिडेंट गलत जवाब असली लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है और कोई जवाबदेह नहीं होता।
0: ओके, सो बट बेसिकली अ यूजर कैन अपलोड अ फोटो फ्रॉम हैंड रिटन सर्किट डायग्राम्स और अ कॉम्प्लेक्स ग्राफ एंड AI कैन एनालाइज द सर्किट कंपोनेंट्स, कैलकुलेटर्स, वैल्यूज एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स इंस्टेंटली, नॉट ओनली जस्ट फॉर कैलकुलेटर्स एंड ऑल बट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो इट कैन हैपन।
1: सो सुफाना, इट कैन मिसरीड images, diagrams and

कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम खुश हैं आप लोग और एकदम फर्स्ट क्लास लग रहे हैं आज सब। स्वागत है आपका इस रंगीन शाम में और आपकी शाम को और बेहतर बनाने के लिए आप सभी ने ट्यून कर लिया है बेलगावी का सबसे बड़ा और सबसे पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु और मैं हूँ आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो होस्ट और दोस्त यानी कि RJ आयुष। और आज का ये शो होने वाला है एकदम खास क्योंकि हम बात करने वाले हैं आप सभी को साहस देने वाले उस शब्द के बारे में जो आपको लाइफ और वर्ल्ड को फेस करने के लिए काबिल बनाता है और वो शब्द है यस कॉन्फिडेंस। अगर ये है तो सब कुछ है दोस्तों। ओवरऑल पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही करेंगे आपका मनोरंजन। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ बने रहना है और कर लेनी है अपने रेडियो की वॉल्यूम एकदम फुल और साथ ही सुनते रहना है 90.4 KLE कनसु वेनु ध्वनि।

दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के फेवरेट शो बी रिलैक्स में, और आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 एफएम केएलई कनसू विद आरजे आयुष। और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के बारे में, द इनर पावर। ओके दोस्तों, कॉन्फिडेंस या फिर आत्मविश्वास जिसे हम कहते हैं, इट्स अ सेल्फ बिलीव, इट्स नॉट अ ट्रेट, इट्स अ माइंडसेट, अ वे ऑफ लाइफ। कॉन्फिडेंस एक तरह की क्वालिटी है जो हमारे अंदर से ही रेडिएट करती है और हमारे नजरिए को बढ़ाती है, जैसे हम खुद को देखते हैं या लोगों के नजरिए भी हमारे प्रति थोड़ा सा बढ़ा देता है। देखा जाए तो ये एक तरह का डायनामिक फोर्स है जो हमने अपने गोल्स अचीव करने में मदद करता है, ऑब्स्टिकल से सामना करना सिखाता है और हमारी लाइफ को एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस बना देता है। और हम बनाएंगे आपकी शाम को थोड़ी सी फुलफिल्ड। तो आप सुनते रहिए मेरे साथ ये धमाकेदार सॉन्ग और हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE का नसू।

Hello and welcome back one more time to Belgavi's first radio station Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu, जहां हम करते हैं आपका entertainment और देते हैं आपको कई सारी interesting जानकारियां, क्योंकि आप सुन रहे हैं हमारा favorite show Be Relaxed with your host RJ Ayush। दोस्तों, confidence होता क्या है ये हमें जान लिया, इसकी कई सारे नाम है जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी। जानते हैं हाउ कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट इन आवर प्रोफेशनल एज वेल एज इन आवर डेली लाइफ। पहला, पर्सनल ग्रोथ, ये एक तरह से फ्यूल का काम करता है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, और साथ ही आपको मोटिवेट करता है एक एम्बिशियस गोल सेट करने के लिए, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। विदाउट कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मी, फियर ऑफ फेलियर कैन होल्ड अस बैक फ्रॉम रियलाइजिंग आवर पोटेंशियल। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस से ऑफकोर्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी ग्रो होती है। व्हेन वी बिलीव इन व्हाट वी से एंड व्हाट वी स्पीक, अदर्स आर मोर लाइकली टू लिसन एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। आप बताइए, आपके अंदर सेल्फ डाउट है? अगर है तो उसे हटाकर उसको कॉन्फिडेंस से रिप्लेस कर दीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। और साथ ही मैं सुनाऊंगा आपको कुछ जबरदस्त गाने, तो आपको क्या करना है, आपको बने रहना है मेरे साथ और सुनते रहना है वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं हमारा प्राइम शो बी रिलैक्स और आज हमारी बात चल रही है आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस पर। दोस्तों तो मैं आपको कुछ वेरियस रोल्स बता रहा था कॉन्फिडेंस की। आपकी लाइफ उसमें अगला नंबर आता है करियर सक्सेस का। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी वो की है आपके सक्सेस के लिए। कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू टेक एन लीडरशिप गोल्स और रोल्स, एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड एक्सेल इन द करियर्स। क्या आप समझे? इमोशनल वेलबींग में भी हेल्प करता है। जितना आत्मविश्वास हमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है उतना ही आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके इमोशनल वेलबींग में भी, आपके स्ट्रेस कम करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए, हर चीज में हेल्प करता है। व्हेन वी ट्रस्ट इन आवर एबिलिटीज वी नेविगेट लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स एंड इट्स रेजिलियंसेस। चलिए बात करेंगे आप कैसे कॉन्फिडेंस को कल्टीवेट कर सकते हैं या यूज कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगा कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स। तो सुनते रहिए मेरे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक वन मोर टाइम। दोस्तों उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। बात करते हैं हाउ डू यू कल्टीवेट, ये बात वापस ले रहा हूं लाइन। दोस्तों बात करते हैं हाउ डू यू कल्टीवेट कॉन्फिडेंस, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स, खुद से बातें कीजिए, मतलब अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उन्हें निकाल कर उनको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। डोंट से आई कांट डू दिस, से आई कैन डू दिस, लर्न फ्रॉम दैट एंड इम्प्रूव। सेकेंड, सेट अचीवेबल गोल्स, ब्रेक डाउन योर गोल्स इंटू स्मॉलर अचीवेबल steps, celebrate each success along the way to boost your confidence. Tisra, visualize success. ये बहुत important part है। दोस्तों आजकल आपने एक शब्द का नाम सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं manifestation। Of course, next episode या अगले कई episodes में मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दूंगा, पर manifestation आजकल बहुत popular है। जिसमें क्या होता है, आप लोग already ये visualize कर लेते हैं कि भैया मैं एक successful आदमी बन गया और उस life को धीरे धीरे आप जीने लगते हैं। ये क्या है, ये है manifestation। तो आप वो भी try कर सकते हैं। कुछ टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा सॉन्ग ब्रेक। तो आपको क्या करना है, सुनते रहना है मेरे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

दोस्तों कुछ और टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। आप अपने फेलियर्स को एक तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के नजरिए से देखो। कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग फेलियर्स बट अबाउट बाउंसिंग बैक स्ट्रॉन्गर। प्रैक्टिस

सेल्फ कंपैशन, खुद को काइंडनेस से ट्रीट करें। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो भी गई है तो इट्स फाइन, फॉरगिव योरसेल्फ। ट्रस्ट मी, व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ यू ग्रो इन लाइफ। कॉन्फिडेंस थ्राइव्स इन एन एनवायरनमेंट ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको आपके लाइफस्टाइल बदलने से आएगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर आएगी। अगर आप कुछ अलग करना है, आपको अलग करना चाहते हैं, तो आपको आपके अंदर पहले चेंज लाना पड़ेगा। चलिए, नाउ आई एम गोना प्ले सम सुपरहिट सॉन्ग्स। प्लीज सुनते रहिए हमारे साथ, आप सभी का फेवरेट शो बी रिलैक्स।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनासू, और जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे आयुष। एक फ्रेज मैं आपको बताता हूं जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस इन एक्शन, जिसका मतलब है टू सी द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। कंसिडर सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मेनी अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल्स क्रेडिट देयर सक्सेस टू देयर अनवेवरिंग बिलीफ इन देमसेल्फ्स। एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स को ग्लोबल कंपनीज में बदल दिए और रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, उनका ड्राइविंग फोर्स था द कॉन्फिडेंस। आप किसी से कम नहीं है, आपके पास भी वो पोटेंशियल है जिससे आपको पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो टेक्निक्स मैंने आपसे शेयर की आप वो यूज कर सकते हैं, बस खुद पे बिलीव रखें, अपने एक्शंस, अपनी लाइफस्टाइल्स को थोड़ा सा बदलिए, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाएगा। और साथ ही बने रहिए 90.4 KLE कनसू पर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू और हमारा शो बी रिलैक्स चल रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं योर इनर पावर के बारे में, यानी कॉन्फिडेंस के बारे में। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को इनसाइड आउट बदल सकता है। आज के इस एपिसोड में हमने बात की दैट कॉन्फिडेंस इज द की टू अनलॉकिंग योर फुल पोटेंशियल। इट्स अ क्वालिटी दैट कैन बी कल्टिवेटेड एंड रिफाइंड थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव थिंकिंग एंड रेजिलियंस। और इसको समझ कर और अपनी लाइफ स्टाइल में डालकर अपनी लाइफ में आप अचीवेबल, सक्सेसफुल और हैप्पी बन सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर पोटेंशियल एंड लेट योर कॉन्फिडेंस बी द गाइडिंग लाइट ऑफ योर जर्नी टू सक्सेस। दिस इज योर होस्ट आरजे आयुष साइनिंग ऑफ। जल्द मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग अहेड।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारह हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

टोनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कबाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात। हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड न।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।